0: आगे आगे आगे आगे आगे आगे ये पेटे ना खा ची रहूं की कार तो रे थोड़ी इन्ना
1: वाओ
0: लिमा रे
1: इन्ना